झूला बंदोलेरा चलना था ना उगे दोना को झूला ना इंदा बरा बरा बरा बरा बरा बरा बरा बरा तो या तेरे टाइम बोले यार आल कोका कोला पार्क यस लॉस लिया इवाली आयरन पिक से कन्वर्ट इन लॉस कोकी लिया इवाली या कमेंसो एक्शन डाले ahora mi mito de la vuelta para allá con toda tu familia noche boricua en el coca cola park yes ay tutti guillermo guillermo en tu radio